0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: Melbourne Museum ki nayi bhavya pradarshini. Rome, Empire, Power, People. अब खुल चुकी है ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जाने बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल म्यूजियम विक्टोरिया डॉट कॉम डॉट एयू
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: पेश है ScienceWorks में नई और जीवंत प्रदर्शनी. Color, see the world in a new light. यहाँ देखें चमकते खनिज ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद रंगों को देखें रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा.

आप सभी को हमारा यानी दीप्तिमान और शारदा का सप्रेम नमस्कार। आज 11 जुलाई 2026 की शाम है। मेलबर्न में ठंड ने अपना घर जमा लिया है और वहाँ भारत में गर्मी जाने को है और मानसून आने को है। मानसून हैज कम टू सून, परहैप्स वी विल नो लेटर। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम एक बहुत ही धार्मिक भाव से प्रेरित है। हम लोगों ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पूरी की और हम लोग वापस आए वहाँ से, और इस बारे में हम आपसे आज काफ़ी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट टिप्स और क्या करें क्या ना करें कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। चलिए सुनते हैं ये गाना।

मित्रों, जब हम एक अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन लोगों का जो भव्य चेहरा है वो सामने आता है। इन सब में, इन तीनों देवों में महादेव तो एक ही है, भोलेनाथ बाबा, जिनके प्रताप से, जिनकी करुणा से, जिनकी दया से हम लोग सदैव आप्लावित रहते हैं और हमारा जीवन सत्यम, शिवम और सुंदरम हो जाता है।

मित्रों, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं। ये यात्रा काफ़ी दुरूह मानी जाती है और विशेष कारणों से। मेन जो मुख्य कारण इसका दुरूह होने का है कि ये लगभग 55 किलोमीटर का एक ट्रेकिंग है या वॉक है जो करना पड़ता है, वो भी तिब्बत में, तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन में जो कि अब चाइना के पास है। लेकिन सबसे मुश्किल जो एस्पेक्ट है, डायमेंशन है इसका, वो ये है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड, काफ़ी ऊंचाई पर ये ट्रैकिंग करनी पड़ती है। हम लोगों ने जो अपनी यात्रा की 24 जून से 5 जुलाई तक, तो हम लगातार 3650 मीटर से लेके 5200 मीटर के आल्टीट्यूड पे रहे। उस आल्टीट्यूड पे एक एक कदम चलना मुश्किल होता है। आप 5 सीढ़ियाँ चलते हैं और आप थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लगभग 65% होती है समुद्र के। तो वहाँ जाकर मालूम पड़ता है कि जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन, वो कितनी वैल्यूएबल, कितनी अमूल्य धरोहर है हमारी, और हमको

0: त्रिभा से हम आगे तिब्बत की राजधानी लासा में। लासा 3650 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे ही हम लोग वहाँ लासा पहुँचे, हमें हल्का सा चक्कर आने लगा और हमारे पैर अनस्टेबल हो गए। हमें लगा जैसे कि जो धरती है वो धीरे धीरे हिल रही है। ये सब सिंपल साइंस हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस के। तो वहाँ पे लैंड करते ही हमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस का एक हल्का सा मॉडरेट सा शॉक लगा। आप सोचिए कि आपकी बॉडी, हमारा शरीर जो कि समुद्र तल पर रहने का अभ्यस्त होता है, अगर उसको अचानक से 100% ऑक्सीजन से 65% ऑक्सीजन देना शुरू करता है तो लंग्स, हमारे सारे क्रिटिकल ऑर्गन्स परेशान हो जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। तो इन कारणों से हमको पहली बार AMS का सामना करना पड़ा।
1: तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, सारी दुनिया देखी है पर कैलाश एक तरफ।

वहाँ पे जो करंट टेम्पल है बौद्ध धर्म का प्राचीन टेम्पल 950 सदी में बना हुआ टेम्पल। हम लोग दो दिन वहाँ पे एक्लिमेटाइज किए, फिर उसके बाद हम चल दिए। अब तिब्बत से लासा से लेकर कैलाश मानसरोवर की जो ट्रैकिंग शुरू होती है, वहाँ जो बेस स्टेशन है दार्चिन, उसकी दूरी लगभग 1200-1300 किलोमीटर है, यानी 4-5 दिन का बस में बैठकर सफ़र। और वही शायद सबसे अधिक चैलेंजिंग पार्ट था हमारे लिए। बस में सुबह 8 बजे बैठना और फिर दिन बस चलती थी शाम को, कभी रात में 10 बजे तक चलती थी। हमारा पहला पड़ाव था लासा के बाद शिगात्से। शिगात्से तिब्बत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। और हमें एक चीज़ जो दिखी पूरे तिब्बत में, चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप किया है तिब्बत में, कि वो कभी कभी जो मेनलैंड चाइना है उससे भी अधिक अच्छे से डेवलप किया। 120 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए 4-lane रोड स्ट्रक्चर, पहाड़ों के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर्स बने हुए हैं, टेलीकॉम टावर्स बने हुए हैं, सो कम्युनिकेशन, बिजली और रोड चीन ने तिब्बत के कोने कोने में पहुंचा। इसके लिए चीन धन्यवाद का पात्र है।

मित्र हमारा एक और पड़ाव जो रास्ते में पड़ा, जो हमको काफी स्मरणीय रहेगा, वो एवरेस्ट बेस कैंप। एवरेस्ट बेस कैंप जब हम लोग पहुंचे तो हमारी

करते हुए, और जैसे ही सूरज ढला सूर्यास्त हुआ, तुरंत ही चंद्रोदय हो गया, चंद्रमा का उदय, और चंद्रमा की शीतलता ने फिर से माउंट एवरेस्ट की चोटियों को अपने सुनहरे से आंचल से ढक लिया। प्रकृति का यह अनुपम रूप बिल्कुल हम लोग मुग्ध होकर देखते रह गए। एवरेस्ट बेस कैंप डेफिनेटली हमारी इस पूरी ट्रिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।

उसके बाद शिगात से होते हुए हम लोग फिर सागा गए, एवरेस्ट बेस कैंप सागा, फिर टाचन जो जो बेस स्टेशन वो बन गया, और टाचन के हमें मानसून झील गए, वहाँ पर भगवान शंकर माँ पार्वती की अर्चना की हमने, वहाँ पर हमारे जो गुरुवर हैं उन्होंने हम सब के लिए एक रुद्राभिषेकम का पूरा पाठ किया, बहुत ही अनुपम धार्मिक और बिल्कुल भक्ति से ओत प्रोत दृष्ट मानसरोवर के तट पर बैठकर पूजा करना, शिव की आवाज़ पूरे आसमान में गूंज रही है, और हमें ऐसा लगा कि साक्षात हमारे सामने हमारे अंतर में

मिथुन जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम इन तीन डायमेंशंस में सबसे सुंदर और सबसे प्रिय शिव तत्व है। शिव तत्व का मतलब है कि हम टॉलरेंस रखें अपने आसपास जो हमारी कायनात है, हमारा परिवार, हमारी कम्युनिटी है, उस पर हम भक्तिपूर्वक प्रेम पूर्वक नटराज जैसे महानृत्य में जीवन को सराबोर रखें। साथ ही अगर कोई उद्दंडता करता है तो फिर तांडव का भी प्रयोग करें। ये है शिव तत्व। ऐसे महान भोलेनाथ, आदिदेव, लॉर्ड शिवा, शंकर भगवान को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी सभी की कैलाश यात्रा, कैलाश पर्वत यात्रा सफल हो, सुफल हो और आपका जीवन शिव तत्व से परिपूर्ण रहे।